0: बता लो क्या नंबर 060875942 मेरा नंबर तमे इलेक्ट्रिक का साइड तो नुक्स करने का नंबर 2 कुफी करने का नंबर 10 कस के ए बंक रुपए बंगल को तो कुन रुपए ला एक नंबर यार व्हाट्सएप का नंबर 060875942 का फेसबुक उनको मंचन एक बार सचिन तेरे को जिस यार स्पाइस उसका फैम मंत्र साथ कैपिटल चास नंबर मार रहते हो नंबर कोड जिस यार फैम कैपिटल
1: Number 10. I'm not sure if you're going to be able to do this.
0: Number 10,
2: Sika.